0: संसारिक वचिक भजन रंग का भाव गोट के सोची उत्तर स्तर में
1: किसी खेती का इस्तेमाल लेना चाहती अब बढ़ने पर सभी मनोहर पशुपतिनाथ सब प्लाज्मा इत्यादि इटालियन खान रखने पर साइकिल कम्बाइन मिल राइस मिल चारा मशीन हार्वेस्टर सात पटल है पशु पंक्षी का धारा बनाना प्लेट मशीन महिला का संसद खेती किसानी करना सब मेरे सम्मान का उसे रद्द बिगड़ सब मेरे कृषि कर मशीन के विशेष मामला जाए खबर कर्म से खबर आपको बता देता कृषि सम्बन्धी दोनों सामान किन्न चाहती यदि चाहती बसले सांसद पाँच बजी मनोहर पशुपतिनाथ सरकार सम्पर्क नम्बर
0: 9855-25014 9825-0826
1: नवजीवन सरकारी संस्थाको पछि पुरा पसलमा पाउँछ रोडको उत्तर प्रान्त लगत जानकारी कराइटी

इच्छा कम हो गई है, उन्हें बच्चों बापा का ऐसा भी मतलब दुख दे सके। सोलह बरस के उम्र कम से कक्षा में अपना

0: 6 पैसा लेकर यह भूटान मेला जमता है तो 25 पैसा लेकर हम इन मेला खेले गए। 25 पैसा
1: तो 25 पैसा में हमने भोजन खरीद लिए।
0: हाँ, और उनसे एकदम निवास खेल ली। हाँ, उन्होंने लंच घूम ली। मैं जब ऑर्डर देगा तो अपना तो अब शायद

0: काम धंधा में न कर कमाई से करे तो कमा जाए। और वो बोले वहां तो बताए तो कि काम में धंधा से जो हमारे में जो मछली अब रमाइए तो हो सत्रह महीने लाते हैं हो सत्रह महीने लाते जमाने के अनुसार रामायण अनुसार अब आप जमाने बाबा के रामायण करे बाजी आज जमाने तभी के नहीं जाता बैठ अब वो टाइम में नहीं जाना जाता बैठ सकते हैं घरों में लड़का बहुत मिल मिल के खेले होते हैं होली भाई उसके को खवाई पिलाए हुए घर में तो बलुआ नाले बना के सब खाए पिए आराम से वो मौज करें उसे जरूर लाए कुछ नहीं हो वहां जमाने तो टी तो हमारे तो गलत है मैंने रमजान घर रामायण करे थे उन्हें घर रामायण करे दूसरा घर घर जा घर बोलिया नहीं गई कि तो बोली है तब गई आज जमाना भी घर बहुत पहले तो पूरा मिला मैंने अब पूरा मिला भी बताया सब मिलकर सब फोटो लाते हैं सब अपने अपने भाई बंधु खुद जीत है कुछ नहीं आज साल तक वैसा गड़बड़े लगा था त्योहार आप तो ठीक है आप कहना होना तो हम बोलना हो तो कहना
1: ठीक है
0: ठीक है।

इस परिवार ने नगद सहायता प्रदान करने इसका लगी कुल 59,00,000 रूपये बराबर को नगद सहायता स्वीकृत कर संयुक्त राष्ट्रीय विश्व खाद्य कार्यक्रम UNWFP को आर्थिक सहयोग संतोष नेपाल कारखानों को संजीवन तथा मधुबन नगरपालिका को समन्वय और सहकारीमा कार्यक्रम संचालन गरिएको हो। विपद संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत मापदण्ड 2081 र पूर्वानुमानमा आधारित पूर्व कार्य ढाँचा 2083 अनुसार लागू

0: अपना बेलाबेली साग सब्जी फल फ्रूट समेत पूरा खाना है और चाहना सफल है पूरा खाना संसद दुई बरसम जानकारी
1: रेडियो गुरुबाबा एफएम द्वारा जारी संदेश।

और हर बार कमाई को रोक दिखाई पाकिस्तान देश के अंदर उसका प्रसाद अगले घटना हो दिल्ली में प्रदर्शन प्रसाद यात्रा द्वारा काम कला की अगली ज्यादा हो चुके सुशील और आधिकारिक जानकारी को लेकर विश्वास कर होस अपना खाता सुरक्षित रख होस और पूरी शंका लगे तो तुरंत नदीवी को सुरक्षा करने लगे जानकारी दी होस आपत्तिक अवस्था में कम कर देती नेपाल प्रभावित एक सुंदर सुंदर हुआ एघारह तेरह मानव व्यक्तिगत मुद्दे को भी हो एघारह से पत्थर तक बाल हेल्पलाइन 10-9-8 में कॉल करोस हामी मिलेर मात्र रोक्न सक्छौ मानव बेच बिखानको हाकी युनेस्को क्लब र ट्रान्स इन्टरनेसनल नेपालको साझेदारीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रतिद्वारा चलचित्र

0: 하기는 한다.
1: 빈스도들이 단발이 마루키라 니라카스 कतिबारिश प्रस्थान उद्देश्य से बांसुरी नगर पालिका उड़ा नंबर 8 का रेस्ट मनोहरी पूजा गांधी फर्किंगा लगाई प्रशंत्र किया फैले का हरी पूजा कर गांव का पड़कर रेशमान चौधरी चांद्रबाट तिरानब्बे घर को या मुझे करोड़ी 200 रूपया उठाकर 18,600 में रेशम पूरी गांव का डिस्पंडेंट होगा गंगाराम चौधरी तेसरो कांतसी राम थारू मटोबा राम शिव चौधरी चौकीदार लगायत को उपस्थिति में गांव का शासन देवता पुहार अथवा देव एक सही पशु साठ मुर्गी को बलि देख विधि पूर्वक पूजा कर विशेष कर हरि पूजा कर खेती में कौन मेरे रोग निरग्न जरा विश्वास कर हरियर पैला दिन थारू समुदाय में हरियर साग पात बारी में फर्लक हरियर तिना तुलसी अशुभ मान्छेलाई अपिलको से आसु तेल रूपले काम गर्न चलन धर्मा त्यसपछि कुरा दुधको सुरक्षा छाकमा दर्शे साझा खेपन खेप्रा पानी गर्न सेतुमा कारण पाउँछ सबुजानको खेपमा छैन हो धान बारीमा किरा निरग्न धार्मिक विश्वास र त्यही प्रकार यसमा चौधरी चाँद पत्रबाट बर्खा खेतीमा पैसा पहिला ठुला पूजा कर पार्छ ठैमिर पार्छ मन्त्र हरि पूजाका दिन सुन्दर तिहार पार्छ बजाए मिल्न उन्नास काम गर्न चलन रहँदा घटनाका बाँसवटी नगरपालिका एक चिपाङसे सल्यान जोडना सड़कमा पहिरो तथा माथि खसकले सड़कको अवस्था ठ्याल जोखिमपूर्ण बनाउँदा बर्खामा सड़कमा पहिरो तथा माथि खसर पार्छ विद्यालय छैन विद्यार्थी वृद्ध वृद्ध तथा दैनिक आवत जावत गर्न स्थानीय नागरिकको समस्या नपर्नबाट सड़कमा थप पहिरो खसर सेक्न हो क्षति र सेक्न जोखिम रहेकोले समयमा आवश्यक विपद व्यवस्थापन तथा सड़क मर्मत गर पर्न स्थानीय दर्शुगणका माग्दा बाँसबरी नगरपालिका एक सय प्रान्त स्थानीय बासिन्दाका सड़क मुक्त जोखिमपूर्ण अवस्थाप्रति सम्बन्धित स्थानीय तह तथा सरकार अधिकारीका ध्यानकर्षण गरी तत्काल आवश्यक व्यवस्थापन सड़क मर्मतका लागि भरपाईका अधिकारबाट स्थानीय खामा सड़क अवरुद्ध होइदिए अत्यावश्यक सेवा सहित दैनिक आवत जावत प्रभावित गति सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका समयमै आवश्यक कदम चाँड अर्जित गर्नबाट यी विषयमा स्थानीय सरकार सड़क मर्मतका काम पहलकर्तीबाटै नम्बर एक कौडा सदस्य दीपक विश्वकर्मा विश्वकर्मा सड़क मर्मत कर सके हेलो सड़क पहिरो माटी खसर बदलबाट यातायात वडा कार्यालय सड़क मर्मत नगरपालिका से समन्वय जानकारी दिलक।

0: बैंकों के द्वारा बैंक द्वारा तो आपकी बहुत
1: अनुसार हम अपना आकस्मिक 1030 से गांव में जहां पर जान के बाद
2: समाचार सुन्न हमार सन्देश का समय बढ़ाई लागल बा हमार सन्देश रहना से पहला मुख्य मुख्य सन्देश बांसपरी नगर पालिका में काल 19 गते कृष्णा शर्मा अष्टमी अर्थात अष्टिम व्यक्ति क्रम राजीना भेल बा रसवा स्थित भोटे कोशी मध्या में पदौ 10 गते अला किनाशकारी पहला भाषा 8,4,216 जन संपर्क केन्द्र अब हमार सन्देश कार्य 7 बजे नेपाली भाषा हमार सन्देश लेखाइने बाटी तब समग्र समाचार पक्षका सबको सँगै हुँदा प्राथमिक सङ्ग्रह गौरीशङ्कर क्यामरा मरमेशसँग सङ्ग्रह बिन्दु कुमार प्रविधा रेडियो रेडियो प्रभावित सुन्दी जय भारत।

0: प्रतिरोध राख्न आवश्यक जानकारी लिनेछ देखा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल डब्ल्यूडब्ल्यूएफ नेपालका साथै दिपेक मुरियाला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्वोच्च अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिथका साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
1: मानव के जीवन व्यक्त को ज्ञान रोकथाम नहीं समझाता।

0: कई जादू हो सकते सुस्ती और आधिकारिक जानकारी को लगभग विश्वास करोस अपना पाता सुरक्षित रखोस कोई शंका लगे तुरंत नजीकी को सुरक्षा कर्मी जानकारी दिखोस आपत्कालीन अवस्था में कहाँ कल करते नेपाल प्रहरी 1000 वा 1013 मानव व्यक्तिगत वृद्ध को 1177 तथा बाल हेल्पलाइन 1098 मा कल गर्नुहोस्
1: सजग नागरिक सुरक्षित समाज मानव बेच बिखन विरुद्ध सबैको साथ
0: हामी मिलेर मात्र रोक्न सक्छौ मानव बेच बिखन बजार भारतीय युनेस्को क्लब र इन्टरनेसनल नेपालको साथमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रतिभाबाट जनहितमा

कि दुर्व्यवहार कर सकते को समझे यदि उसको जीवन सफल करने से उसको उसको भविष्य में अगर उसको जीवन में ठूलो नुकसान होने वाला समय तस्ता घटना हमी गोप्य राखने तर गोप्य राखे हम इसको समाधान गोप्य ढंग खोजे तर ये सामान्य किसिम को हमीर तस्ता कि रासमें दुर्व्यवहार संबंधित निकाय में गए रोकने पर्च हरासमेंट भन्ने कुरा त गोप्य राख्नै हुँदैन तर पनि यसको प्रकृति अनुसार कस्तो किसिमको यो दुर्व्यवहार छ अवस्था हेरेर प्रकृति हेरेर हामी उपायतिर लाग्छौँ।

मैं प्रभाव दिखाई मन से डिजिटल या उसका किसी अन्य घटना में डिग्री प्रदर्शन तथा यात्रा व कामकाजी का कई ज्यादा मौसम में विश्वसनीय या आधिकारिक जानकारी को लेकर विश्वास निर्भोष अपना काटा सुरक्षित निर्भोष या कोई शंका रहेगा तुरंत नदी को सुरक्षा करने में जानकारी निर्भोष आपत्ति संस्थाओं में खबर कर जाएगी नेपाल प्रहरी 1013 मानव विस्फोटन उत्तर ब्यूरो 1177 तथा बाल हेल्पलाइन 10 9 8 में कॉल करो